0: 102.7 FM, आपका धर्म, आपका स्टेशन, रेडियो जागृति.
1: You are listening to Radio Jagriti 102.7 FM.

चर जगत संरक्षणीं सत्पदां चंचन चंपक नासिकाग्र विलसन मुक्तामणिरंजितां श्रीशैलस्थलवासिनीं भगवतीं श्रीमातरं भावये ओम श्री दुर्गा लक्ष्मी सरस्वतीभ्यो नमः।

स्वस्ति नहिंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्षो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॐ जतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु शन्नः कुरु प्रजाभ्यो अभ्यन्नः पशुभ्यः सुशान्तिर्भवतु ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः हरिः ॐ श्री सत्य सनातन धर्म की जय। भक्तजन ट्यूशन एवरीवन ऑफ यू जय सीताराम। वेलकम टू आराधना, वेलकम टू रेडियो जागृति 102.7 एफएम स्टीरियो इन योर वीकनिंग। एंड डिवोटीज, दोज ऑफ यू हु आर होल्डिंग हैंड्स विद अस अराउंड द वर्ल्ड वाया अवर वेबसाइट www.jagriti.com, to all of you, Jai Sitaram. Sanatana is Hindu. Every Monday morning at this time, we recite our Sandhya mantras. As Hindus, there are certain mantras that must be chanted when we awaken ourselves in the morning, from sleep and from slumber. Bhaktajan, let us recite these mantras together. As we open our eyes this morning, we visualize Bhagavan as Omkar, the chief name of Paramatma, who grants all liberation. Opening our eyelids this morning to a beautiful day, we chant together. Om Bindu Sanyuktam Nityam Dhyayanti Yoginah Kamadam Mokshadam Chaiva Om Karai Namaha Om Karai Namaha. Next, devotees, we open both of our palms in front of us and visualize at the tip of the fingers

नमः शिवाय। ओम हर हर हर महादेव। उमापति महादेव की जय। सयापति रामचंद्र की जय हो। भक्त ऑफ यू प्लीज स्टैंड प्रिपेयर फॉर आरती। फॉर लॉग्ड इन प्लीज डू आरती दिस पॉइंट इन टाइम। लेट भगवान श्री राम ब्लेस यू। भगवान वॉन्ट्स टू ब्लेस यू। प्लीज लेट भगवान ब्लेस यू।

की जय, पवन सुत हनुमान की जय, वृंदावन विहारी लाल की जय, सियावर रामचंद्र की जय, श्री सरस्वती माता की जय, श्री रामायण माता की जय, श्री तुलसीदास महाराज की जय, श्री गुरु महाराज की जय, सत्य सनातन धर्म की जय, सदगुरु की डनव जय जय सीताराम। आप लोग का नाम लेते सिस्टम कर दिया आपके वैसे श्री राम जय जय।

श्री राम जय राम जय जय राम। ढोल जय सीताराम। चंडी पीछे छोड़ी जले चिटली बिफोर इट ब्लोज अवे। एक्सक्यूज मी, द बुकर्स यू नो हैव सम एज।

लक्ष्मण जी सो सती देवी जस्ट लाइक माता सीता हिन्यू तो सती देवी हिन्यू लाइक माता सीता चकित भय ब्रह्म हृदय विशेष सो हाउ डू आई रिस्पॉन्ड टू सती माता क्योंकि लुक लाइक माई भाऊजी आई बोट माई भाऊजी शी लाइक माई भाऊजी और आई कैन इंसल्ट हर ये भगवान श्री दुल्हन लक्ष्मण जी वाज शॉक्ड यू नो हाउ टू रिस्पॉन्ड कहीं न सक कछु अति गंभीरा प्रभु प्रभाव जानत मति लीला एंड ही टॉट दिस इज भगवान श्री राम लीला न शिव जी भगवान श्री राम लीला इफ आई विल से नथिंग फॉलो लक्ष्मण जी रिमेन क्वाइट आई विल से नथिंग यस फ्रोजन यू डिडंट बाउ यट जस्ट रिमेन स्टिल नो रिस्पॉन्स नो रिस्पॉन्स व्हाट आई गुड विथ यू नो रिस्पॉन्स Sometimes you don't know how to respond, then don't respond. You don't know an answer, say I do not know an answer. To be forced to respond, you know. Post a question, what do you think about that? No comment. No comment. Think about it afterwards. Person say, what do you think about so-and-so, so-and-so? No comment. Because walls do have ears. You say A, and they'll say he said B. No comment. Be very careful. So Lakshman ji remained quiet, mum. For the first time, one can say. Then now, Bhagwan Shri Ram. Bhagwan Shri Ram. My master, Bhagwan Shri Ram. Sati Mata, Sita Mata, look at Bhagwan Shri Ram. Now, don't compare this. But at the same time, let's just do a reference. Literature. When Supradakha, Ravan's sister, like a henny, like a snake, came to Bhagawan Shri Ram, she disguised like a beautiful lady to see Shri Ram will fall for her. Remember? She began to giggle.

0: 102.7 FM, आपका धर्म आपका स्टेशन रेडियो जागृति
1: इन्फोवीक न्यूज इवेंट्स एंड डिलीवरेबल्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ ट्रिनिडाद एंड टोबैगो. Prime Minister, the Honourable Kamla Prasad Bisesa SC, has outlined Trinidad and Tobago's priorities as the country prepares to serve on the United Nations Security Council for the 20th.

रावण जो लहरों में तूने बहाए, जो चला गया वो लौट के फिर ना आए, तेरा करम ही है जो संग तेरे ही जाए। हर हर गंगे हर हर गंगे हर हर।